0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਲ 604-325-8370 604-325-8370।
2: परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों, आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उचारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है, इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकत है। साडी एक जबान, साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकती। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श। आप ही विचार करा लैन, साध संगत बख्शो आशीष और उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता फिर

0: पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दियां। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बालां के जिवें तंदूर दे विच लकड़ां बलदियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थकां जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावां, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खड़िया नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक ले। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है कि असी आम तौर ते शब्द ए भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख, परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई बारी अर्ज करना हुंदा, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है वह सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा है वह आसमान विच है। दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी उहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। उह किहड़ी ताकत है, ओ केड़ी मिकना ती शक्ति है कि जेड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े हुए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब।

छोटे पुत्र बाबा मोहरी जी ने जिस वेले गुरु अमरदास महाराज जिया नू सचखंड गया नू तीन दिन बतीत हो गए ने तीसरे दिन महाराज ब्यासा दरिया दे किनारे जिथे पातशाह जिया दा संस्कार कीता सी उथों सारे अंगीठे नू इकट्ठा कीता है और नेड़े बगदे ब्यासा दरिया दे अंदर संगत जी अर्पण कर दिता है जल प्रवाह कर दिता है। फिर सारिया संगतां नू लै करके पातशाह जी बौली साहब दे नजदीक बैठ गए जिथे तमाम संगतां दूर दरेडियां तो आईयां ने जो गुरु अमरदास महाराज जिया ने बाई मंजियां थापियां सी हिंदुस्तान दे बाईयां सूबियां अंदर बाई सिख प्रचारक कले सन उन्हां दा भी आउणा होया है। गुरसिखां दी जो दर्शनी भेटा लैके आए गुरु रामदास महाराज जिया दे चरण

0: कर गए सच खंड गवन कर गए ने। उस दिन तो लै करके धन गुरु रामदास महाराज चुप चुप जे रहिंदे ने, कला कला रहना महाराज पसंद कर दे ने।
1: एकांकी बिना चिनारी
0: एदा संगत जी किसे नाल भी गल बात करन तो बिना रहे एकांकी अकल।

0: संगत चारे दिशावां चो आई है। ए वी गुरसिख आ करके श्री गोविंदवाल साहिब दी धरती ते आके वस गए ने।
1: मोहन अपर मोहरी दो।
0: फिर संगत जी बाबा मोहन ते बाबा मोहरी जी जेड़े धन गुरु अमरदास महाराज जी दे दोनों पुत्र ने, ए वी एदां गोविंदवाल साहिब

0: जी बाहर आउंदे ने साडी बेनती नूं प्रवान करदे ने क्योंकि बाबा मोहरी जी बहुत आग्याकार सन। गुरु रामदास महाराज जी नाल बहुत ही मित्रता सी, बहुता प्रेम सी। जिस वेले गुरु अमरदास महाराज जी ने गुरु रामदास जी नूं गुरता गद्दी दी बख्शिश कीती है, जेड़ा वड्डा पुत्र बाबा मोहन सी ए थोड़ा जिहा बागी हो गया सी संगत जी। एदा गुरु अमरदास जी ने आख्या सी, पुत्र मोहन गुरु रामदास जी नूं सीस चुका के नमस्कार कर। इन्हें जवाब दे दिता सी, नहीं पातशाह, पिता जी एदा पहला हक गुरता गद्दी ते मेरा है, तुसी एदा गुरु नानक दे घर दे सेवादार रामदास नूं गुरता बख्शिश कर दिती है, ठीक नहीं। ए थोड़ा जिहा विचारां दा तकरार होया सी, पर जिस वेले गुरु अमरदास महाराज जिया ने छोटे पुत्र नूं इशारा कीता है, हुक्मां नूं मन करके पछोकड़ इतिहास नूं जाण करके कि गुरु नानक देव जिया ने भी भाई लहणे नूं गुरता गद्दी बख्शी सी, ना कि अपने पुत्रां नूं, फिर गुरु अंगद देव जिया ने दासू ते दातू दोवां पुत्रां नूं छड्ड करके साडे पिता गुरु अमरदास जिया नूं गुरता बख्शी सी। उसे मर्यादा अनुसार साडे पिता गुरु अमरदास जिया ने सानू दोहां भरावां नूं छड करके गुरु रामदास जिया नूं जोग जाणिया है। एदां संगत जी, फिर बाबा मोहरी ने सीस नवा दिता सी, चरण स्पर्श कर लए सन। एदां सारियां संगतां बैठियां विचारां करदियां ने,
1: सबन मोहरी सो जब कहियो,
0: जदों सारियां ने संगत जी

ने अपना सुभा बदल लिया है। धन गुरु रामदास महाराज पहले बौली साहब की सेवा हुई सी, अपने सिर ते टोकरियां ढोना कीतियां, गुरु के लंगरां विच भी बहुत ही बड़ी काल कमाई करना कीती गुरु रामदास महाराज जी ने। जिस वेले तो गुरु अमरदास जी सचखंड गवन कर गए सन, उस दिन

काम क्रोध और लोभ मोह एह इंद्री रास लपटा दे दी पवारी पुरख बिधात बहुर बहुर जन्मादे जौ भयो कृपाल दीन दुख पंजन ताओ गोर मिल सब सुख लादे कहु नानक दिन रैन त्यावाओ मार काढ़ी सगल उपादे इयो जपे उपाई पुरख बिधाते।

0: कारण कोट दिनस दुख पाव है, करी महत रंग माण है, फिर बाहर बाहर पछताव है।
1: हां जी, ध्यान नाल निमख पाद ते जमक ला के निमख काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे है, एवें इसे तरह उचारण करना करी मोहत रंग माण है, फिर माण है ते विश्राम लाउणा, फिर ते थोड़ा जा ठहरा ला के, फिर बहर बहर पछतावे।
0: अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख भूलो।

0: चौथा पंजवा छेवा सतवा अठवा नावा दसवा ग्यारवा बारवा एवं उचारण करने एक दो तीन चार पांच इदा नहीं उचारण करने जिवें ज्ञानी जी ने उचारण किया घर बारवा इदा ही उचारण करना जी
1: एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियान पा भज पार ब्रह्म निरंकार
0: भज पाठ पोला ही भज नहीं करना पोला ही त्याग सगल सियानपा भज पार ब्रह्म निरंकार
1: एक साचे नाम भज हो सग

0: नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव।
1: नाम दृढ़ इथे जमक ला के कर भगत हर की भली पाठ पोला ही करना भली ना निकल जावे भली प्रभ की सेव। भली दा पावे चंगी जे भली कह दिता ओदा अर्थ नहीं बनेगा। हांजी।

0: ठाकुर पेखत साधु संग
1: हर हर नाम चरावह रंगन आपे ही प्रभ रंग मान मह राम नामा जाप कार कृपा।

ही करना जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण कीता है, हर जीव सोई करह जे भगत तेरे जाचा है, एहो तेरा बिरद। बिरद दा अर्थ हुंदा है आदत सुभाव, ते जे बिरद हो गया ते उहदा अर्थ हो जाणा बुढ़ापा, धद्दा लग गया ते बुढ़ापे दा अर्थ होवेगा, दद्दे दे नाल की हो गया आदत सुभाव। हे परमेश्वर तेरा ए वाला सुभाव है, तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है, तू अपना जेड़ा तेरी शरणी आउंदा है, तेरी भगती नू मंगदा है, उहदे ते तू किरपा कर दिंदा है। कर जोड़ नानक दान मांगै अपणिआं संतां देह हर दर्श।

हों मैं रोग मानक को दीना, काम रोग मैं गलवस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिशे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

जरूर दूर करोगे। ये भी खुशकिस्मती है कि मनुखा देही दे विच ए एहसास हो जाए कि मेरी जिंदगी दी मंजिल की है, मेरे जीवन दा मनोरथ की है। हजूर ने अमृत बाणी विच बख्शिश कीती है कि इस जिंदगी दा मकसद ए वे कि गुरु दी सेवा ते परिपूर्ण परमात्मा दा सिमरन, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाही। भाई साहब भाई नंद लाल जी दा गजलां विच जो पहला शेर है ओ है ही मनुखा शरीर दे नाल संबंधित। भाई साहब कहिंदे ने हवाए बंदगी अवुरद दर वजूद मरा, हवाए दा अर्थ है तांग, बंदगी दा अर्थ सिमरन। हे मालक तेरी बंदगी दी तांग ही मेनू इस जिसम विच इस चोले विच लेके आई, हवाए बंदगी अवुरद दर वजूद मरा, ता मैं ए वजूद हासिल कीता, ता शरीर धारण कीता, तेरी बंदगी कर सका वगर ने जोके, जोके दा अर्थ शौक। बाकी मेनू कोई शौक नहीं इस तन विच रहन दा, सिर्फ एक शौक के देगी मिली मैं तेरी बंदगी कर सका। हवाए बंदगी अवुरद दर वजूद मरा, वगर ने जोके चुनी आमदन नाबूद मरा। और कोई मकसद नहीं। हजूर ने इथे फिर जदो जग्यासु दे प्रश्न सवाल संपन्न हुए ते अगो उत्तर शुरू कीता है। ओ उत्तर उत्तर जो दिता गया गुर सिख वालों, ओ पहला उत्तर पहला यही सी के अपने आप नू समर्पित कर दे, अपनी खौमे नू छड़ दे। जे गुरु सज्जन नू मिलने परमार्थ दे पंध ते चलने, परमार्थ दी पगडंडी ते तुरने, ते सब तो पहली गल ए धारण कर इत मार्ग चले भाई अड़े। ओ भरावा मेरे वीरा, जे इस मार्ग ते एक रस्ते ते चलना चाहने ते पहला काम ए कर गुर कहे सो कार कमाए जियो। कार दा अर्थ है कम, जो गुरु कहन, जो सतगुरु अपनी रसना तो कहन, बिना तर्क दे, बिना खुजत दे, बिना किसे कटाक्ष दे, तू सत बचन करके मान ले। पहला तेरे लिए उत्तर ए, पहला सबक ए वे कि जिसनु मथा टेक दिता है उस गुरु दे कीते ते तर्क ना कर जो कहिंदा उनु सत बचन करके मनी। आओ ए बचन है कि गुर कहे सो कार कमाए जियो, क्योंकि गुरमत दे अंदर सतगुरु दे घर अंदर जदो आपा गुरु वाले बन जाइए, सतगुरु नु आपा समर्पित करन दा अर्थ के अपनी खौमे नु, अपनी मैं नु, अपनी खंगता नु मिटा देना। जो मेनू अज समझ नहीं पै रहा उस ते तर्क मत करा, एक गल चेते रखा कि मेरी अकल, मेरी बुद्धि, मेरी सियाणप दी सीमा है, सतगुरु आगाद बोध ने अज समझ नहीं पै रही, ए मेरी अल भगता है, कल नु सतगुरु कृपा करन आपे ही जना देन। एदा मतलब ए नहीं कि जो समझ नहीं पैंदा पिया ओदू खंडन करके कह दिता जाए कि इस चीज नू ता मैं मनदा ही नहीं। एक है खूह दे डड्डू वाली बिरती कि सिर्फ खूह दे दायरे नू समझ लेना कि इस तो अगे पानी ज्यादा नहीं हो सकता, समुंदर होना ता झूठ है। जिवें खूह दा डड्डू खूह दे पानी नू ही सीमा मनी बैठे, मना तू अपनी अकल नू सीमा मत मन के उस सतगुरु दे जो बचन कह ओनु सत बचन करके जिंदगी च कमा ले। आओ थोड़ा जा बाणी विचो असी प्रमाण लईए। हजूर दा एक बचन कह फरमाया सतगुरु जी ने, कहन लगे तिन का जन्म सफल है, ओना गुरमुखां दी जिंदगी फल सहित है, जो चाले सतगुरु पाए। पाए दा अर्थ पाणा, ओदी रजा, ओदी आग्या विच ओना दी जिंदगी सफल है जो चालें सतगुर पाए। कुल उदारें अपना
ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ।

जबर शतर तखर दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेले तो लैके सतगुरां जी दे इस गुरमत दीवान दी हाजरी भर रहे गुरु सवारे सत संगी जनों सतगुरु जी दे इस दरबार की मर्यादा अनुसार अमृत गुरबाणी दे जाप गुरबाणी कीर्तन और गुरु सवारियां ने आए हुए हजूर दे पवित्र हुक्म दी विचार आप जी दे नाल सांझी कीती है। अरदास और हजूर दा हुक्म आपा सरवण कीता है, आओ निर्धारित समय अंदर रह के आप जी नाल सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र जीवन बचपन उन्हां दे काल दा समा गुरगद्दी ते विराजमान अमृत बाणी दे उच्चारण करता पावन पवित्र जीवन विचों कुछ विचार आप नाल सांझे कर सका। करो कृपा साध संगत, विचार दी प्रारंभता तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस दिन दा दास इंग्लैंड दी धरती ते

0: मूढ़ा को कहाँ करे
1: जिस ठाकुर से ना ही चारा
0: ठाकुर की जय सद नमस्कार
1: जाते मन लगा प्रमीठा
0: सर्व सुखता हूँ मन बुठा
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया
0: सर्व सुख नानक तिन पाया
1: अगंत शाह अपनी दे रास
0: हाथ पीत बरते अनंत उलास
1: अपनी ईमान कश बहुर शाह होले
0: अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रतीत आप ही भोवे
0: और उसका विश्वास न हो
1: जिसकी बस्ते से आज्ञा रखे
0: की आज्ञा मन न मथ
1: उसके चौगुण करे निहाल
0: नानक साहिब सदा दयाल
1: अनक भांत माया के हित
0: सर्वर होवत जान अनेत
1: बिरख की छाया स्यों रंग लावे
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे
1: जो दी सह सो चालन हार
0: लपट रहे होते अंधे अंधार
1: घटाऊ स्यों जो लावे नेह
0: ताको हाथ न आवे के
1: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया
0: मिथ्या हो मैं ममता माया
1: मिथ्या राज जोगन धन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या रथ हस्ती असु वस्त्रा
0: मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता
1: मिथ्या ध्रोह मोह अभिमान
0: मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान
1: सिर भक्त साध की शरण
0: नानक जप जप जीवै हर के चरण
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे
1: मिथ्या नेत्र पेखत पात्रया रूपाद
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद
1: मिथ्या जन्म पर विकार को तावहे
0: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा
0: मिथ्या बास लेत विकारा
1: बिन बूझे मिथ्या सब भये
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये
1: बिरथी साख की आरजा
0: साख बिना कह होत सुचा
1: बिरथा नाम बिना तर अंध
0: मुख आवतता कह दुर्गंध
1: बिर सिमरन दिन रहन बिरथा विहाय
0: एक बिना ज्यों खेती जाए
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम
0: कृपन के निरार्थ दाम
1: धन तन तेजन दे कट बस्यो हर नाऊ
0: नानक ताके बल बल जाओ
1: रहते अवर कश अवर कमावत
0: मन ही प्रीत मुखों गंड लावत
1: जानन हार प्रभु प्रवीण
0: बाहर पीक न काहू भीन
1: अवर उपदेश है आप न करे
0: आवत जावत जन मैं मरे
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप
0: जिसकी सीख तरह संसार
1: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता
0: नानक उन जन चरण पराता
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने
0: अपना किया आपे मन
1: आप करतन बेरा
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
1: पाप सियानप सकल ते रहत
0: सब कछ जाने या तुम की राहत
1: जिस भावे तिस लये लड़ लाए
0: शांत अनंतर रह समाए
1: सो सेवक जिस कृपा करी
0: निमक निमक जप

निरंकार है नहीं लय नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दियाइए को रहना पर ये पाइए को रहना पर ये पाइए।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

बौड़ी सच्चा साहेब एक तुझ ने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर परिये साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खास पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत ही सत्या ते तो लव्या

0: सचकाल पूर्व कल काल बेताल बीओ बीज बदले गए अब क्यों बेदाल जे को तो कबे रुचि हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैविच खुम चढ़ाइए सनु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए ना कोए
1: मोहल्ला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे
1: और बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े हो रखन का साधन मारिए।

0: धुआ पूरा तपे का सतगिर धुआ हो का जुगरा थगन का कूड़ा गैर धुआ हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समी सच में अशर सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे सुरख पुठानी मलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाव पग करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको अख पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

नानक कूड़ रहया प्रभो। मथे टिका तेड़ धोती का खाई, हाथ छुरी जत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे

सिल पूज सब गुल समाधन मुगज उठवे भूखण सारं त्रैपाल ते हाल विचारं गलमाला तिलक लिलाटं दुई धोती वस्त्र कपाटं।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पालक लवो 99 सेंट्स दी गुच्छी 10 पाउंड स्नो बॉय रसिट पटेरोस 298 दा बैग वड्डा साइज गोभी दा फुल 298 दा 4 पाउंड इंडिकेन साबत लाल मसर लवो 298 दा बैग।

काल मूरत अजोनी सैभं गुर प्रसाद। अवतारी पुरुषानु सुते सिद्ध जगत वल्लों कुछ उपनाम मिलते ने जिन्हों तखल्लुस कहते ने, कोई खासियत देख के कोई अहमियत देख के उन्होंने नाम दिता जाता है। समुची जिंदगी मर्यादा विच बजी हुई देख के जगत दे मुंहों निकलिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिंदगी एक खेल है, तमाशा है, जन्म नफा भी खेल नुकसान भी खेल, जवानी भी खेल बुढ़ेपा भी खेल। जिसने ऐसा समझिया जानिया और जीविया, देशवासियों ने उसनु कहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जिसने महसूस कीता अनुभव कीता जगत दुख है, जगत रोग है, जगत मिथे है, जगत ते वगदे हुए हंजू ने, जगत ते एक पीड़ा है एक वेदना है, जो समस्त जगत दी पीड़ा नाल भर गया और बुलंद बांग कहन लगा जगत एक पीड़ा है एक दुख है एक रोग है, और उस रोग दा समाधान लेके उस रोग दी औषधि लेके जिसने देश देशांतरां दा रटन कीता और रोगियां नु स्वस्थ करदा रहा, समस्त दुनिया दी जबान तो ये शब्द बुलंद बांग बुलंद होया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां। ये तो ऐसा बाबा आया जो रोगियां लई वैद है, इसते कुल औषधि है। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज दी इस गल नु समझना होवेगा जगत एक पीड़ा है। तो जगत तो मुराद की लिए मनुख, मनुख स्वयं एक पीड़ा है, मनुख ही समस्या है। ये नहीं कि मनुख दियां समस्यावां ने, नहीं, मनुख खुद ही एक समस्या है। ऐसा है कि मनुख दियां वेदनावां ने, मनुख दे दुख ने, ऐसा नहीं, मनुख खुद ही एक दुख है, मनुख खुद ही एक पीड़ा है, मनुख खुद ही एक वेदना। जद मनुख है तो पीड़ा है, मनुख है तो दुख है। और गुरु नानक इसकी शुरुआत इंज कर देने, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, सुख ते किधरे भी नहीं दिखाई देंदा। जन्म भी पीड़ा है, जीवन भी पीड़ा है, मरण भी पीड़ा है। एक भ्रांति है मनुखानु, जन्म सुख है, जीवन सुख है, सिर्फ मौत पीड़ा है। तो जीवन भर जन्म दिन मनाना है क्योंकि जन्म सुख है, जीवन दी लालसा रखनी है क्योंकि जीवन रस है, मौत पीड़ा है इसनु भुलाना है, मौत वेदना है इसनु गलत करना है। मौत ही दुख है ए चेते ना आवे। मनुख ने शमशान घाट भी बस्तियां तो दूर बनाए, कब्रिस्तान भी शहरां तो दूर बनाए, जीवदे जागदे मनुख दिखाई देन कब्रिस्तान ना दिखाई देन, हसदे खिड़दे चेहरे दिखाई देन जल्दियों या लाशां ना दिखाई देन। और घर विच कोई मृत्यु हो गई है तो कोशिश कीती जांदी है सारियां दे अंतिश करन दे।

जन्म दुख है, शायद तुसी सारे दुख दा ही जन्मदिन मना रहे हो और दुख दे जन्म दी खुशियां मनांदे हो या नच रहे हो टप रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बोध नहीं है, समझ नहीं है। मनुख नु दुख दी भी समझ नहीं। अगर दुख दी समझ आउंदी तो शायद उसनु ये समझ आ जांदी जन्म दुख है, जन्म दुख है। जन्म दा बोध नहीं है इस वास्ते दुख दा बोध नहीं है, दुख दा बोध नहीं है इस वास्ते जन्म दा बोध नहीं है। जीवन दी लालसा है, दुख दा ज्ञान नहीं है इस वास्ते कह सकते हैं जीवन दा भी ज्ञान नहीं। और धार्मिक दार्शनिक ऐसा कहंदे ने जो मेरी समझ दे च नहीं ओ नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दे ते नहीं है। होवेगा परमात्मा, होवेगा किधरे सुख, होवेगा दुख, होवेगा कलेश, पर मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। जैसे पत्थर दी दुनिया च कोई कलेश नहीं है, कोई सुख नहीं है, ना सुख दा बोध ना दुख दा बोध, ना दिन दा ज्ञान ना रात दा ज्ञान, ना सर्दी महसूस होंदी है ना गर्मी महसूस होंदी है। पत्थर ही सिर्फ पत्थर नहीं, बहुते दिल बहुते दिमाग मनुखां दे पत्थर ही ने, बिल्कुल पत्थर ने। अगर दुख दा बोध नहीं है और वाकई नहीं है, और सुख दा ज्ञान नहीं है और वाकई नहीं है, तो इस दिल नु क्या कहिए, इस दिमाग नु क्या आखिए, ये तो पत्थर है। जो मेरी समझ देश नहीं वो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दिखते नहीं है क्योंकि मैनू उसकी समझ नहीं है। जिस जिस चीज दी मैनू समझ नहीं है वो नहीं है मेरी दुनिया च। अगर परमात्मा भी मेरी समझ देश नहीं है तो कम से कम मेरी दुनिया दिच परमात्मा नहीं है, भावे होवे भावे जगत दिच है पर मेरी दुनिया दिच नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज बहुती मनुखता तो बिना जी रही है और समझ नहीं तो परमात्मा नहीं, या इंज कह लईए बहुती मनुखता परमात्मा दे होंदिया होया परमात्मा तो बिना जी रही है, जैसे अंधा सूरज दे होंदिया होया सूरज तो बिना जीवंदा। रोशनी ते चारों पासे फैली हुई है, प्रकाश ते डुल डुल के पै रहा है, पर अंधा इतने प्रकाश दे होंदिया होया प्रकाश तो बिना जी रहा है। परमात्मा दे होंदिया होया बहुती मनुखता परमात्मा तो बिना जी रही है। एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इतनी भी अगर समझ आ जाए तो समझ लेना चाहिए है। समझ दी दुनिया आरंभ हो गई, समझ दे मार्ग ते मनुख चल पे है। केड़ी समझ? जो मेरी समझ देश नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डी समझ है। जो मेरी समझ देश नहीं, जो मेरे बोध देश नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डा ज्ञान है। कहिंदे ने ज्ञान दी यात्रा अज्ञान दे बोध तो शुरू होंदी है, रोशनी दी यात्रा अंधेरे दी समझ तो शुरू होंदी है। ये भी ठीक है कि अंधे नू अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, जो जन्म तो अंधा है उनू अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि अंधेरे नू देखण वास्ते भी ते अखां दे च रोशनी चाहीदी है, अखां दे च नूर चाहीदा है। बहुती दुनिया मूर्खता दे च जींदी है पर मूर्खता दिखाई नहीं देंदी, बहुती दुनिया गलतियां दे च जींदी है गलतियां महसूस नहीं होंदियां, बहुती दुनिया पाप दे च जींदी है पाप पाप नहीं दिखाई देंदा। जैसे जन्म तो जो अंधा है उन्हों अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, पापियां नू पाप दा कोई बोध नहीं, मूर्खां नू मूर्खता दी कोई समझ नहीं। गलतियां बार बार जो हो रही ने गलती

मुर्दे तैर दे। पानी का मनुख नाल भी वैर है, अगर मनुख नाल वैर है तो फिर मुर्दे भी डुबने चाहिए। मुर्दा तो नहीं डुबता, जीव का मनुख क्यों डुबदा है? ये अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, संतुलन गवा बैठता है, ता डुबदा है। लोग इसका तवाजन डामाडोल कर देता है, सीमा तो वध्या होया अहंकार इसका बैलेंस बिगाड़ देता है, सीमा तो वधी हुई वासना इसका संतुलन डामाडोल कर देता, डुब जाता है। हम दे खाते डुबे आया, इधर डुब गए। डुबे की पहचान की होगी? उदा नितनेम डुब गया होगा, नहीं करता होगा। रहत वै डुब गई होगी, अमृत वेला डुब गया होगा, गुरु भक्ति डुब गई होगी, शील संयम डुब गया होगा, दया विशालता सम दृष्टि डुबी हुई होगी। हम दे खाते डुबे आया, महाराज कहते मैं देखदा डुबे हुए, दुनिया डुबी हुई है, गर्क हुई है। डुबे की पहचान की है? उदे कोल नितनेम नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा, जप तप नहीं होगा, शील संजम नहीं होगा, दैवी गुण नहीं होंगे, डुबे होगा, गर्क होया होगा। कदी कदाई कोई कद मनुख अपना तवाजन अपना बैलेंस ठीक रखता है, डुबदा नहीं, उसे नु असी कहिंदे निर्लेप है, कमल दी तरह पानी वधदा है, कमल होर उपर उठदा है। धन घर दे च वध रहा है, डुबदा नहीं पिया, प्रभता वध रही है, डुबदा नहीं पिया। नहीं तो कोई प्रभता च डुबे हुए ने, कोई धन संपदा दे डुबे हुए ने, कोई रूप रंग दे डुबे हुए। हम दे खांते डुबे, महाराज कहिंदे मैं देखदा दुनिया ते डुबी पई। धार्मिक जीवन ते कुछ गुणा ते खड़ा है, सूरज अपना नूर वंडदा है संसार दे किरणा दे रहा, परमात्मा दा प्रकाश हिरदे च पहुंचदा है गुणा दे रहा। गुणा तो पता चलदा इत्थे जानना है, सारी रोशनी सूरज दी है, सारे गुण परमात्मा दे ने, सब गुण तेरे मैं नाही को, विण गुण कीते भगत न हो। मेरे घर दे च चानना है, पर चानना ते सूरज दा है मेरा ते, अगर हृदय दे च गुण आ जान, गुण परमात्मा दे ठीक है। गुण रोशनी ने, औगुण अंधेरा, जितने औगुण होणगे उतने ही वो भटकदा होया मनुख होवेगा, अंधेरा होगा। जितना गुण होणगे उतना ही उदी जिंदगी दे चानना होवेगा, प्रकाश होवेगा, और जीवन सही मार्ग पे चल रहा होगा। तो मैं फिर दोहरावां, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया, तो चलदी की है, सुरत चलदी है। तुसी चल के आ गए, शरीर चल के आ गया, पैर चल के आ गए ने, इहदे नाल हाजरी असी भरी है, असी गुरु की हजूरी च नहीं गए, गुरु की हजूरी च सुरत जाती है। शब्द नाल सुरत जुड़ेगी, हाथ पैर नहीं जुड़ते। इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है, गुरु की हजूरी विच चले जाना होर गल है। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन, गुरु की हाजरी पे भर देन, एक दो बंदे आउणगे जिन्हां गुरु की हजूरी नसीब हो गई। कलगीधर पिता दे रसना तो ये बोल निकलिया सी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर, शायद जिन्होंने साखी सुनी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर, जितने बैठे हुए सन उन्होंने सुरत उठे नहीं सी, ध्यान उठे नहीं सी, सुरत शब्द देच नहीं सी, हाजर गैर हाजर कुछ नहीं पहुंच सके सन, उन्हों का ध्यान उठे सी, गैर हाजर हाजर चलना ते सुरत ने ना। सुरत अगर शब्द की तरफ चल पई है तो मैं ये भी दोहरा दें ताकि

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते।

रटुत पिंगुरिया। तरले भरा एक शब्द जोदड़िया नाल लिबड़े आया, एक वाक बेनतियां दे प्रवाह जारी करदा होया, एक बचन पर समई अपनी हालत प्रभु दे अगों प्रगट करन वाला, ए महान शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। अब कहने ने, हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़, क्यों मैं चल नहीं सकदा, क्यों नहीं चल सकदे। हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखा है, और जिस बच्चे ने आज चलना सीखा है वो लंबी लंबी नहीं कर सकता। एक कदम चलेगा, दो कदम चलेगा, तीसरे से डिगेगा, लाजमी डिगेगा। लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है, जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नु खुशी हो जाती है, बच्चे नु चलना आ गया है, प्यो प्रसन्न हो जाता है बच्चे ने पैर पुटे ने। खुशी नाल मां बाप फुले नहीं समांदे। जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है, चलो एक कदम ही सही चलिया ते है। एक कदम चल चलना, एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है, बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान कर देने, चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। तू एक कदम चलते सही, वाट लखा को दी है, चिंता न कर। कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए। अगर एक कदम किसी बच्चे ने पुटे है तो गल स्पष्ट हो गई, चलन दी जांच आ गई, ये चल पे। जिस दिन ये बच्चा तीन चार साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे चले ना, मां नू चिंता हो जाती है, पिता नू पीड़ा हो जाती है, ले जांदे डॉक्टर कोलों, हो गया तीन साल दा, हो गया चार साल दा, पैर नहीं पुटदा। तीन चार वरिया दा हो गया अजेश दी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया। कहिंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलता है, मम्मा अखर पहले निकलता है, मां मां ये पहला करण लग पैंदा है। मां शुरुआत है और अखीर देच इस जबान चो अगर निकले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया, मां मां मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा अजे बच्चा रह गया है, बुजुर्ग नहीं होया। मां कहना आया है, वाहेगुरु कहना नहीं आया। जे मां निकले है, अजे शरीरक जो मां सी उसका ना ते निकल आया इदी जबान चो, भावे मां ने नहीं आखिया मैं मां हां तेरी, लेकिन निकलिया प्रकृति इसके मुंह कढवांदी है। चाहे किसी की भाषा इंग्लिश होवे, परशियन होवे, अरबियन होवे, चाहे कोई हिंदी बोलदा, सिंधी बोलदा, पंजाबी बोलदा, दुनिया के तमाम बच्चों की जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट आंदा है मम्मा ही आंदा है, मां मां मां। और जे जिंदगी का अंत होवे ते आखरी आखरी अक्षर ए होवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, जीवन यात्रा सफल हो गई, जगत ते आया सफल हो गया, मां ते निकलिया। और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां। ये बच्चा बच्चा रह गया है, अगे नहीं जा सकया। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु मैं बोलन दी जा नहीं आई,
तेरे बोल मैं सुन सका, मेरे कोल कन भी कोई नहीं, मैं अपनी आवाज तेरे कन्ना तक पहुंचा सका, मेरी जबान नू अजे बोलन दी जाच नहीं आई। तेरे रस्ते ते मैं चल सका, वो पैर में कित्थों लियावां, हैगे ने मनुख कोल पैर, एक क्लब थिएटरां दे मार्ग ते चल देने, बाजार दे मार्ग ते चल देने, संसार दे मार्ग ते चल देने, कदी कदाई कोई कदम जो परमारथ दे मार्ग ते चलन। सतगुरु केंद्र मेरे कोल वो हथ भी कोई नहीं जो तेरा दामन पकड़ सकन, हथ हैन मनुख कोल, कदी पुत्रां दा दामन पकड़िया, कदी पत्नी दा, कदी पति दा, कदी मां दा, कदी पिता दा, कदी मित्रां दा दामन पकड़िया, कदी भरावां दा दामन पकड़िया, कदी भैण दा दामन पकड़िया, कदी पड़ोसियां दा। हे प्रभु तेरा दामन पकड़ सका, अजे मेरे हत्थां दे चो सकत नहीं आई, अजे मेरे हत्थां दे चो पकड़ नहीं आई। हुंदा ते है हत्थां दे कोई ना कोई दामन, हर एक दे हत्थां च हुंदा है, किसी दे हत्थे च मना लेना है, किसी दे हत्थे च पिता दा दामन है, उस दामन दे आसरे ते चल रहे, किसी दे हत्थे च भरावां दा दामन है, किसी दे हत्थे च पत्नी दा दामन है, पति दा दामन है, और किसी दे हत्थे च पड़ोसियां दा। कदी कदाई कोई कबीर जैसा, रविदास जैसा, रामानंद जैसा कह उठदा है, हे प्रभु मेरे हत्थां च केवल तेरा ही पल्ला है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दे अगम्मे बोल, सबे साख कुड़ावे दिथे तो पल्ले तैदे लागी। उर्दू फारसी दामन कह देंदे ने, पंजाबी च पल्ला कह देंदे ने। गुरु नानक कहंदे ने, हे प्रभु मेरे हत्थां च केवल तेरा ही पल्ला है। सफल हो गए हथ, तेरा पल्ला मेरे हथ च आ गया। महान हो गए ने हथ, तेरा दामन मेरे हथा च आ गया। ते जब तेरा दामन मेरे हथा च आ गया, हुण जिथे तू उथे ए दामन मेरे हथा च, ए पल्ला मेरे हथा च। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक अध्यात्मक गहराइयां नू अपने विच छुपाई बैठा है, जिस नू उजागर करन दी मैं एक निमाणी कोशिश कर रहे हां। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु ओ खूबसूरत नेत्र मैं कित्थों लियावां, जिहड़े तैनू वेख सकदे ने, इस तो ज्यादा होर कोई अखां खूबसूरत नहीं आउंदियां जिन्ना अखां विच परमात्मा आउंदा है। वेखोगे अखां, किसी दी अखां विच धन है, टपक रहा लोभ, किसी दी अखां विच रूप है, टपक रही है वासना, किसी दी अखां विच उसकी औलाद है, टपक रही है ममता, ममता ही दसदी पई है अखां विच तियां पुत्र ने, वाशना ही दसदी पई है अखां विच रूप रंग है, क्रोध ही दस रहे है ए लाल अखां ही दस रही ने, अखां विच कोई दुश्मन बैठ गया है और दुश्मन ने अखां लाल कर दितिया। अखां लाल नहीं होईयां, दुश्मन ने लाल कर दितिया, दुश्मन ने अपना रंग अधपक दिता है। कदी कदाई ओ अखां जिन्हां विच परमात्मा हुंदा है, और जद परमात्मा अखां च बैठता है उन्हां नेत्रां तो कोई नेत्र खूबसूरत नहीं आउंदे। वो ऐसी खूबसूरत अख जिहदे चो प्रार्थना झलकदी है, जिहदे च प्रेम झलकदा है, जिसदे चो समदृष्टि झलकदी है, जिसदे चो दया डुल डुल के पैंदी है। उसे दृष्टि नूं आखिया गया अमृतमयी दृष्टि, अमृत दृष्टि। नहीं ते दृष्टि भी जहरीली होंदी है, जिवें कईयां दे बोल जहरीले होंदे ने, कईयां दी तकनी भी बड़ी जहरीली होंदी है, कईयां दे बोल जख्मी कर जांदे ने, कईयां दी तकनी भी आघात पहुंचांदी है, चोट पहुंचांदी है, गिरा के रख देंदी है। तकनी विच जहर भी है,

आवाजा सुन रहे ने, ऐसी गल नहीं है। समुचे परिवार की आवाज सुन सकते ने, संसार की आवाज सुन सकते ने। निरंकार दी ते कदी कदाई कोई कद पुरुष, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं और। ए परिपूर्ण परमात्मा, जितनियां भी आवाजा मेरे कन्ना च पै रही ने, पंछियां दियां, पशुआं दियां, मनुखां दियां, बदलां दी गर्जन, पवन दी शांशां, मैनूं ते इंज लगदा है ए तों ही बोल रहे है। सब तेरी आवाज, सब तेरा नाद, सब तेरा संगीत। तो साहिब कहंदे ने, मेरे कोलो कन्न भी नहीं, मेरे कोलो जबान भी नहीं, मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचावा। किसे दे बोल घर तो बाहर नहीं जांदे, उस दे घर दे ची सिक्का चलदा है, ये सिक्का उसका बाहर नहीं चलता। इदी गल घर दे बंदे ते मन सकदे ने, बाहर दे नहीं, इदे बोल बाहर नहीं चलदे। कदी कदाई कोई कद व्यक्ति उसके बोल सारे महल सारे कलोनी चल जाते हैं, मन लेंदी है समुची वसनीक, उसके बचना उसके बोलों नू मन लेंदी है, सुन दी है। किसे किसे दे बोल राज दरबार दे भी पहुंचते हैं, उत्थे भी सुने जाते हैं। कदी कदाई कोई लखां करोड़ां च इक कद खुशकिस्मत इंसान जिस दे बोल निरंकार तक पहुंचते ने और सुनदा है निरंकार, उस दे बोल परमात्मा नु भी सुनने पैंदे ने, उस दे बोल ईश्वर नु भी सुनने पैंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, वो जबान में कित्थों लेवा जिहड़े तेरे तक बोल पहुंचा सके, वो कन में कित्थों लेवा जिहड़े तेरे बोल सुन सके, वो नेत्र में कित्थों लेवा जो तेनू वेख सकन, और हथां दी ओ मैं पकड़ कित्थों लियावां जो तेरा दामन पकड़ सकन। मेरे कोल ते पैर भी कोई नहीं तेरे मार्ग ते चल सकन। मनुख दी सारी अहमियत खासियत ज्ञान इंद्रियां करके है, कर्म इंद्रियां करके है। अगर एक कर्म इंद्रेस दे कोलों खो लईए ते ज्ञान इंद्रेस दे कोलों खो लईए, फिर पत्थर ते मनुख दे कोई फर्क नहीं है। पत्थर चल नहीं सकदा, पत्थर किसे पत्थर दा दामन पकड़ नहीं सकदा, क्योंकि उदे कोल हाथ पैर नहीं ने। पत्थर नहीं बोल सकदा, पत्थर सुन नहीं सकदा, पत्थर वेख नहीं सकदा, पत्थर सुंग नहीं सकदा, पत्थर स्पर्श नहीं कर सकदा, पत्थर सोच नहीं सकदा। अगर यही सब कुछ धार्मिक तल ते मनुख ना कर सके तो कम से कम धार्मिक दुनिया दा ते पत्थर ही है और कुछ भी नहीं है। होवेगा बाजार देच ए इंसान होवेगा, गुरुद्वारे मंदिर देच ते बैठा है जिवें पत्थर, जिवें एक पत्थर नू कोई बोध नहीं, पत्थर देच कोई गति नहीं, पत्थर देच कोई पकड़ नहीं, पत्थर कोई सुनदा नहीं। मैनू ते एक गाथा याद आई एक सूफी संत हसन दी, वो जद भी कुरान दी तलावत करे ते फिर वाज देवे व्याख्या करे तो मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदा सी और पिठ कर लेंदा सी स्रोतियां दी तरफ। कुछ दिन ते स्रोतियां ने बर्दाश्त कीता, चलो खैर सुन दे पया, चलो मुंह साड़ी तरफ नहीं करदा ते ना सही बोल साड़े तक पहुंचते ने। लेकिन एक दिन स्रोतियां ने बेनती कीती, फकीर साईं ऐसा क्यों कर दे हो, जब सानू सुनान वास्ते ही तलावत करते हो, जब सानू सुनान वास्ते ही उपदेश आवाज देंदे हो, फिर मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदे हो, पिट साड़ी तरफ कर लेंदे हो। तो हसन मुस्कुराया, कहिंदा मित्रों मैं थोड़े विच ते दीवार विच कोई फर्क नहीं समझदा, थानू सुना दिता दीवार नू सुना दिता इको ही गल है, कोई फर्क नहीं है। मेरे कहने नाल दीवार नहीं बदलती, मेरे कहने नाल तुसी भी नहीं बदलते। मैं बोलदा दीवार नहीं सुनदी, मैं बोलदा तुसी भी कित्थे सुनदे हो। ओही कुछ सुनिया जांदा है जो मनिया जांदा, जिसनु मनिया ही नहीं तो की सुनिया। इस तरह दा सुनना तो फिर दीवारां भी सुनदियां। धार्मिक दुनिया दे मनुख पत्थर दा पत्थर रह जांदा है।

मुझे अप्रत परिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया देख तेग जग मैं दो चल राखे आप मोहे और नांद लै तुम मम करहो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दाह जान कर कृपा करहो मोहे हार परा मैं आन द्वार तुहे अपना जान करो प्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम धरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता बिद नाना कृष्ण जथा मात चरित्र उचारो।